0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: ईरान जंग पर अमरीकी अखराजात 43 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। नए दादो शुमार के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक ईरान के साथ जंग पर अमरीकी फौजी अखराजात 43.6 बिलियन डॉलर तक है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक सिर्फ हथियारों के अखराजात 28.1 बिलियन डॉलर थे। यह दादोशुमार एक माह पेशतर कांग्रेस के बजट ऑफिस की तरफ से बताया गया 21.7 बिलियन डॉलर के मुकाबले में तेज से इजाफे की नुमाइंदगी करते हैं। कांग्रेस के बजट ऑफिस ने खबरदार किया है कि तनाजे की शिद्दत के एतबार से अखराजात में तकरीबन 3 बिलियन डॉलर महाना इजाफा हो सकता है। जंग के माशी असरात तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव मार्केट के उतार चढ़ाव से भी जाहिर होते हैं, जबकि इस तनाजे में अमरीकी फौजी भी हलाक और जख्मी हुए हैं। अमरीका और डेनमार्क के माबेन ग्रीन लैंड पर मुआहदा तय पा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अमरीका और डेनमार्क के दरमियान ग्रीन लैंड में अमरीकी फौजी मौजूदगी को बढ़ाने का मुआहदा तय पा गया है। कोपनहेगन और न्यूयॉर्क ने तस्दीक की है कि इस मुआहदे पर आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुख्यमंत्री की जनरल असम्बली के दौरान दस्तखत किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा मुआहदा अमरीका को ग्रीन लैंड की सलामती पर मुस्तकिल कंट्रोल देता है। वाशिंगटन फौरी तौर पर खत्ते में अपने फौजी वजूद को बढ़ाना शुरू कर देगा। स्कूलों में सीखी गई मालूमात रोजमर्रा जिंदगी में कितनी लागू होती हैं के हवाले से हालिया पीसा रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, फिनलैंड में बुनियादी खानदगी और रियाजी की सलाहतियों से महरूम नौजवानों की शराह तकरीबन एक तिहाई तक पहुंच गई है, जबकि बरतानिया समूह में कमी के रुझान से बाहर रहा। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि बरसम भर में देखा जाने वाला यह तनजुल वबाई दौर के सीखने के नुकसान

इदारा हिलाल अहमर के नाम से ही अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए था। फिर 1935 में इसने गाजी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मुंतखब करदा नाम किज़लाई के साथ अपना सफ़र जारी रखा। जंग आज़ादी के दौरान गोला बारूद ले जाने वाली बैलगाड़ियों के साथ आबादी के तबादले के बरसों में बंदरगाहों पर जमा होने वाले महाजरीन के दस्तखानों पर और सिलसिलों के दौरान मलबे के ढेरों के दरमियान किज़लाई हर जगह मौजूद था। आज अगर किज़लाई दुनिया के 190 से ज्यादा ममालिक में नेकी का परचमबरदार जहाज है, तो इस कामयाबी के पीछे इन लोगों की मीरास है जिन्होंने 150 साल पहले इस सफ़ेद परचम को बुलंद करने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी थीं। वो सुर्ख हिलाल एक तहजीब के इस उसूल की ठोस तरीन अलामत है कि इंसान को जिंदा रखो ताकि रियासत जिंदा रहे। जब तक वो हिलाल चमकता रहेगा, बेसहारों का सहारा और बेकसों का चारा बनने वाला ताकतवर हाथ इंसानियत से कभी दूर नहीं होगा। हम हिलाल अहमर की शफकत में परवान चढ़ने वाले और इस अजीम वक्फ की रिवायत के वारिस हैं। समीन, आज हम महाज के पीछे मौजूद इस खामोश बहादुरी और हिलाल अहमर के मुकद्दस तारीखी सफर से गुजरे हैं। वक्फ पर मबनी तहजीब सिर्फ इंसानी जिस्म के जख्मों पर मरहम नहीं रखती, बल्कि इसकी रूह के इंतहाई लतीफ दर्द को भी छूती है। दिल के साथ राबते इस्तवार रखिए और रहमत और नेकी के साथ रहिए। याद रखिए, जब एक हाथ आगे बढ़ता है तो एक जिंदगी बदल जाती है और एक कहानी मुकम्मल हो जाती है। प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानी में अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देने वाले हाथ की कहानी।

क्या आप उन लोगों में से हैं जो सुबह बेदार होते ही कॉफी मशीन का रुख करते हैं? तो फिर ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। अगर ये इस्तेमाल बकसरत हो, एक दिन में कितने कप बहुत ज्यादा तस्वर किए जाते हैं, और क्या कैरमल और क्रीम वाली इंस्टेंट कॉफी को वाकई कॉफी के तौर पर माना जाता है? वो लोग जो सुबह आंख खुलते ही कॉफी मशीन का रुख करते हैं, वो लोग जो अपने मसरूफ काम के निजाम औकात के दौरान अपने कप को मुसलसल भरते रहते हैं, वो जो तवनाई को बहाल करने के लिए कैफीन के बगैर नहीं रह सकते। कॉफी अब बहुत से लोगों के लिए एक आदत से बढ़कर है, ये तकरीबन एक रस्म है, लेकिन इस सवाल भी कसरत से पूछा जा रहा है कि कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल जिस्म पर कैसे असरअंदाज होता है। आज हम एक माहिर के साथ सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जमील ताश जी ओलो सिटी अस्पताल में एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म डिजीज क्लिनिक के माहिर डॉक्टर सेजिन तुआन चाकर ने कॉफी के इस्तेमाल के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के बारे में टीआरटी खबर चैनल को आगाही कराई है। आइए पहले कुछ वाजह करते चलें। कॉफी बजाते खुद एक नुकसानदेह मशरूब नहीं है, डॉक्टर चाकर ये कहते हुए शुरू करते हैं। हकीकत में जब सही मिकदार में और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इस सेहत के लिए अहम फायदे फराहम कर सकती है। तयन करने वाले अवामिल, मिकदार, तरीका इस्तेमाल और फर्द की मजमुई सेहत हैं। तो कॉफी क्यों हमें बेदारी का एहसास दिलाती है? कॉफी का बुनियादी असर इसकी कैफीन के अजसा से ताल्लुक रखता है। कैफीन दिमाग में एडियोसिन रिसेप्टर्स आरजी तौर पर दबाव डालती है, जिससे थकावट का एहसास होता है। ये वजह है कि आप ज्यादा बेदार, खशाश बशाश, तवज्जो मरकूज महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम नुक्ता भी है जिस पर डॉक्टर चाकर का इंतबाह बहुत वाज़ह है। कैफीन हकीकी थकावट को दूर नहीं करती, बस कुछ मुद्दत के लिए उसे मुलतवी कर देती है। अगर आपको दिन भर कॉफी की बढ़ती हुई जरूरत महसूस होती है तो इसके पीछे अक्सर दीगर वजूहात होती हैं, जिससे नाकाफी नींद, दायमी तनाव या खुराक लेने की बेकायदगी। कॉफी की मुस्तकिल जरूरत बाज़ों का जिस्म की तरफ से एक अहम इशारा भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं साइंस कॉफी के बारे में क्या कहती है। हाल ही मुतालियात में कुछ इंतहाई हैरान कुन नतायज सामने आए हैं। 2025 में शाया होने वाले जामे जायजे के मुताबिक रोजाना 3 से 5 कप कॉफी का इस्तेमाल दिल की बीमारियों, टाइप 2 डायबिटीज, फॉलिश, इल्मी कमी और कैंसर की कुछ अकसाम के कम खतरे से मुंसलिक है। इससे भी ज्यादा ताज्जुब अंगेज एक और दरियाफ्त भी है। वो अफराद जो बाकायदगी से लेकिन इतदाल के साथ कॉफी नोश करते हैं।